0: बात कही जाता अका होई डाक्टरनी बहनी बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई औकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। अहा ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई हो जाले ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
1: देखा पाथर खोजत के भगवान ही मिले जैसन हो गईल और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता देता।
0: ठीक बात सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
2: गोश्त मछली अंडा सबसे बढ़िया बा। गोश्त मछली अंडा सबसे बढ़िया बा।
0: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
1: सब मिल के खियावल जाए।
0: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संती छह महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
1: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जवा बेसी दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे दुई जवा बेसी देवल जाए।
0: लेकिन ई सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही। खास करके हाथ सफा रखा खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सकभर धिका के पिए के चाही बुझलू ने।
1: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपंदेही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपंदेही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
3: नमस्ते है नमस्ते होइन बुढेसकाल में के कुरा में हो बुढ़ा बुढ़ी गफी तै
4: के हुनु नर्स नानी जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासू साल को मेसो खोज्दै छम क्या।
3: आहा यो नि तरिका सासू ससुरा को हो त पेट में बच्चा बच्चे देखि दुई वर्ष को हुन्जेल सम्म का यी हजार दिन में आमा र बच्चालाई पोषण युक्त खाना खुवाउने र सरसफाई का बारे में ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुबै को स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
5: लौ ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो के गर्नुपर्छ भन्नुम त नानी।
3: ल यो सुन्नु त रेडियोमा फुकेको फुके हुन्छ त।
6: माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा
7: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
8: सबै मिलाई खुवाऊ।
7: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि छ महिना पूरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
9: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ।
10: हो यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। आईजीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार FM द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।

0: मरगा खांची ओबीसी सीमेंट देश को सीमेंट
1: पीसो शांति को मुहान लुम्बिनी शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: अभिव्यक्ति कानूनी रूप में दंडनीय छ। अनलाइन हिंसा नगरौ र नसहौ।
1: तिलोत्तमा नगरपालिकाको फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना। फोहर मैला संकलन तथा

0: आपको एकमात्र डीटीएच सेवा डिश होम खुशी को कनेक्शन। दांत को सामान्य उपचार देखि जटिल दंत उपचार सम्म अब एउटै विश्वासिलो गंतव्य डर्माडेंट नेपाल हेयर ट्रांसप्लांट स्किन एंड एस्थेटिक डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर
1: डर्माडेंट मा उपलब्ध छ।

0: सुख शांति र समृद्धि का लागि जीवन विज्ञान जीवन जीवने कला आध्यात्मलाई जोड्ने कार्यक्रम जीवन विज्ञान फरक प्रस्तुति का साथ हरेक दिन मात्र रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्जमा।
1: रोहितको प्रश्न छ, भर्खरै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी